और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह हमारा सवाल। बहुत बधाई, हम आपको और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने को समझने का इसी समय लक्ष्मण